लता मंगेशकर जी की आवाज में जीवन के दो राहे पे खड़े। यूं तो जागने का कोई समय नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा होता है, पर अगर सूरज की पहली किरण के साथ जागा जाए तो वो सवेरा बाकी से बेहतर ही होता है।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। हसरत तो सभी की है कि बिताएं जिंदगी सुकून से, हसरत तो सभी की है कि बिताएं जिंदगी कुछ सुकून से, पर उस सुकून को पाने की तलाश में ही बेकार की दौड़ भाग किए जा रहे हैं। मिलता है अक्सर सुकून हमें हमारे भीतर ही, जिसे तलाशते हैं हम दुनिया की भीड़ भाड़ में। 5:40 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

किशोर कुमार जी की आवाज में कोरा कागज था ये मन मेरा। होती होंगी कुछ मजबूरियां रात से लेकर सुबह तक जागने वालों की भी, होती होंगी कुछ मजबूरियां रात से लेकर सुबह तक जागने वालों की भी, वरना सुकून की नींद और ताजगी भरी सुबह किसे पसंद नहीं। 5:46 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं मुझे यानी अपने दोस्त अर्चित को आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की

समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: रहा है।
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: FM Rainbow 101.9.
1: So, नमस्कार दोस्तों, तो आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन रेनबो FM 101.9 और मैं हूँ आपकी आरजे श्रिया। आपको पता है आज यानी 12th मई को कुछ खास है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे, यानी ये दिन उन लोगों के नाम है जो हॉस्पिटल की हार्ट बीट होते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं और नर्सेस पेशेंट को हिम्मत देते हैं। इंजेक्शन से पहले डर मत कौन बोलता है, रात के 3 बजे भी स्माइल के साथ ड्यूटी कौन करता है। जी हाँ, हमारे नर्सेस कभी मेडिसिन टाइम पे देना, कभी पेशेंट को कंफर्ट करना, कभी फैमिली को होप देना और इतना सब करने के बाद भी फेस पे स्माइल। और मुझे लगता है नर्सेस को हम जितना भी अप्रिशिएट करें वो उससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, बिकॉज डिफ़िकल्ट टाइम में एक केयरिंग वॉइस बहुत मैटर करता है, राइट? आपको क्या लगता है?

0: FM Rainbow 101.9।
1: वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं नर्सेस डे पे, तो आपके क्या विचार है और आपके क्या एक्सपीरियंसेस है नर्स डे के बारे में, आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है +91 40 23 23 48 22 पर। आप भी आपके क्या एक्सपीरियंसेस है नर्सेस के साथ, आप क्या बताना चाहते हो नर्सेस को, ये हमारे साथ शेयर करिए और ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम उनको इनको पहुंचा सके जो आपके मैसेजेस है। अभी आप सुनेंगे एक गाने को और उसके बाद हम वापस बात करेंगे नर्सेस डे पे के बारे में।

0: Rainbow 101.9।
1: तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नर्सेस डे के बारे में। तो हमने सब हॉस्पिटल्स में देखे होंगे नर्सेस को, लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है हर जगह, नर्सेस की नॉन स्टॉप डेडिकेशन। कभी पेशेंट का बीपी चेक करना, कभी उनके फैमिली मेम्बर्स को इमोशनली सपोर्ट करना, ये सारा काम ये सिर्फ ड्यूटी नहीं है उनके लिए, ये ह्यूमैनिटी है। हमने ये भी देखा है स्पेशली पैंडमिक के समय पे, दुनिया ने नर्सेस को एक साइलेंट वॉरियर्स की तरह काम करता हुआ देखा है। अपनी फैमिली से दूर रहकर भी उन्होंने हजारों फैमिलीज को होप दिया। आज के दिन सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, ग्रैटिट्यूड का दिन है। टू ऑल द नर्सेस लिसनिंग राइट नाउ, आप सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं, आप रियल लाइफ हीरोज हैं। तो आप सब के लिए हमारी तरफ से एक सलाम। अभी आप सुनिए हमारे एक प्यारे गाना, और उसके बाद हम और बातें करेंगे।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब। सो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड लिमरिक डे के बारे में, एंड टुडे वी आर ऑफिशियली प्रूविंग दैट पोएट्री डजंट ऑलवेज हैव टू बी सीरियस, बिकॉज लिमरिक्स आर बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन ह्यूमर एंड राइम

decide to become best friends. इस पोएम के लिए एक सिंपल सा रूल है, वो ये है दैट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन शुड राइम एंड थर्ड एंड फोर्थ शुड राइम विद ईच अदर. हियर्स एन एग्जांपल. देयर वंस वाज अ गाय ऑन हिज फोन हु क्लेम्ड he could work all alone, but one little ping did absolutely everything, and now all his focus has flown. And that's the beauty of limericks. They take everyday moments and make them sound extra dramatic and hilarious. So this summer season, if your kids are asking what to do, bore ho raha hai, to unse kahiye ek chota sa limerick banaye aur उसको सुनाए कि पता है ना रूल, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ लाइन राइम करते हैं और थर्ड और फोर्थ लाइन राइम करते हैं. तो उनको एक छोटा सा एक्सरसाइज करी दीजिए और हमसे भी शेयर करिए उन्होंने क्या लिखा है. आप भी लिख सकते हो, बच्चों से भी लिखवाइए. सो हमसे जुड़े रहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है +9140233484822, और तब तक सुनते रहिए एक प्यारा सा गाना.

नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूं आपकी आरजे श्रिया। आज के इस खास सेगमेंट में हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बेहद खूबसूरत संगीतकार इकबाल कुरैशी साहब को, जिनका जन्म 12 मई को 1930 को हुआ था। कभी कभी कुछ कलाकार बहुत शोर नहीं मचाते, लेकिन उनका काम धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। इकबाल कुरैशी साहब भी उन्हीं संगीतकारों में से एक थे। उनके धुनों में एक अलग ही सॉफ्टनेस थी। ऐसा लगता था जैसे कोई कहानी धीरे धीरे खुल रही हो। और जब भी उनके गानों का जिक्र होता है, एक खूबसूरत नॉस्टैल्जिया अपने आप साथ आ जाता है। रेडियो का दौर, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का चार, और वो मेलोडीज सीधा दिल से जाके पहुँच दिल को जाके पहुँचते हैं।

सिर्फ कुछ शब्दों में कहती गई है और यही उनकी कॉम्पोजिशंस की खूबी थी। वो बड़े बड़े अरेंजमेंट से ज़्यादा इमोशंस पे ध्यान देते थे। इस गाने को सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को क्वाइटली एक्सप्रेस कर रहा हो। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक फ्लो, एक एहसास। और शायद इसी वजह से उनके गाने सुनते हुए लिसनर्स खुद को उन इमोशंस से जोड़ पाते हैं।

Rainbow 101.9। तो वेलकम बैक दोस्तों, हम सुन रहे आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूं आपकी आरजे श्रिया। आप सुन रहे हैं रेनबो एफएम 101.9। तो हम बात कर रहे थे इकबाल कुरैशी साहब के बारे में। एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनके म्यूज़िक में मेलोडी हमेशा सबसे आगे रहती थी, उनकी धुनें बहुत नेचुरली फ्लो करती थी। ऐसा लगता था जैसे लिरिक्स और म्यूज़िक एक दूसरे से बातें कर रहे हो। और उस दौर में कंपोजर्स सिर्फ ट्यून नहीं बनाते थे, वो पूरे सीन का मूड क्रिएट करते थे। अगर सिचुएशन इमोशनल है तो म्यूज़िक सॉफ्टली दिल को छूता था, अगर रोमांटिक है तो धुनों में एक स्वीटनेस महसूस होती थी। यही वजह है कि उनकी कई गाने आज भी सुनते वक्त फ्रेश फील होते हैं, क्योंकि इमोशंस कभी पुराने नहीं होते। अभी हम सुनेंगे एक इंग्लिश गाना, उसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: रेनबो 101.9।
1: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इकबाल कुरैशी जी साहब के बारे में। उनका एक और बेहद खूबसूरत गाना है, वो हम ना थे वो तुम ना थे। ये सिर्फ एक गाना नहीं, जैसे एक याद हो। कभी कभी कुछ गाने सुनते ही इंसान अपने पुराने दिनों में चला जाता है। कोई पुराना सड़क, कोई मुलाकात, कोई अधूरी बात, सब अचानक याद आने लगते हैं। और यही एक कंपोज़र की सबसे बड़ी ताकत होती है, म्यूजिक के जरिए इमोशन को जिंदा रखना। इकबाल कुरैशी साहब के गाने में यही वार्म्थ थी। उनके गाने सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना रेडियो सॉफ्टली कहीं बज रहा हो और माहौल अपने आप खूबसूरत हो जाता है। अभी सुनिए एक प्यारा सा गाना, उसके बाद हम बात करेंगे और इकबाल कुरैशी के साहब के बारे में।

अभी आप ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद के स्टूडियो कलाकार से वाद्य संगीत सुन रहे थे। अब आप पूरन चंद कश्मीरी से एक गीत सुनिए। पूरन चंद कश्मीरी।

FM Rainbow 101.9। तो दोस्तों, आज इकबाल कुरैशी साहब की जयंती पर हमने याद किया एक ऐसे संगीतकार को जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई खूबसूरत धुनें दी। इकबाल कुरैशी साहब का संगीत सिर्फ सुनना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। उनकी मेलोडीज में सिंप्लिसिटी भी थी, ग्रेस भी और एक सच्चाई भी। अगर आज मौका मिले तो उनके कुछ गाने ज़रूर सुनिए, हो सकता है कोई धुन आपके दिन को थोड़ा और खूबसूरत बना दे। और इसी प्यारे एहसास के साथ अब बढ़ते हैं अगले शानदार गीत की तरफ।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इकबाल कुरैशी साहब के बारे में। तो उनके एक फिल्म से आपके लिए एक गाना तैयार है, तो सुन लीजिए उस गाने को, उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम पर।

0: Rainbow 101.9।
1: सो दोस्तों, आज हमने बहुत सारे बातें की, जैसे कि नर्सेस डे पे, और उसके बाद लिमरिक डे पे, और उसके बाद हमने इकबाल कुरैशी साहब के बारे में भी बात किया है। आपके क्या ख्याल है इस पे? आप हमसे शेयर कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आप हमसे जुड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपकी कोई अगर फरमाइश है तो वो भी बता सकते हो। कोई भी गाना हो, हम कोशिश करेंगे कि वो हम प्ले कर सकें, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं +91402323484 पर। तो उससे पहले सुनिए एक प्यारा सा गाना।

0: Rainbow 101.9.
1: ఇప్పుడు మీరు వినబోతున్నారు న్యూస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. ఉస్కే బాద్ హమ్ జారీ రఖేంగే హమారా కార్యక్రమ్.
2: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
3: मैं श्री हिमंता बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण कर.
2: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली. इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं. यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है. श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है. वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं. पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे. तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी. वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी. विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है. इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा. वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई. पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है. इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे. इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है. प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया. निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की. जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं. उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है. भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया. ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था. इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे. पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे. यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है. गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई. आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है. आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष का विषय है हमारी

0: से हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma has taken oaths as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered him the oath of office and secrecy at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs, Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as chief minister. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat last evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel.
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: Prime Minister Modi also reiterated his appeal to avoid buying gold until the situation returns to normal. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decisions of the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister Shubhendu Adhikari. In a social media post, the Prime Minister said the welfare of people of West Bengal is the top priority. Mr. Modi expressed

नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूं आपकी आरजे श्रिया ऑन रेनबो FM 101.1 101.9। तो दोस्तों, अशोक जी है जिन्होंने हमें मैसेज किया है। कहते हैं, काश कि हर पल हर वक्त रुक जाए, पास मेरे तू पल भर के लिए आए। एक पल में बता दूंगा तुझे अपने दिल का हाल, भले ही फिर जिंदगी हरदम के लिए जाए। सही है, सही है, बहुत अच्छा कहा आपने अशोक जी। अभी आप सुनिए एक गाना, उसके बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे श्रिया और आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन रेनबो एफएम 101.9। हमने बात किया है रिलैक्सिंग कैसे कर सकते हैं, हम लोग सोशल मीडिया से दूर कैसे रह सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं लेके आई हूँ आपके लिए। शाम होते ही एक चीज़ हर जनरेशन को कनेक्ट कर देती है, इवनिंग वॉक्स। तो रिलैक्सेशन का ये भी तो एक उपाय है ना? पार्क में चलना, कॉलोनी के राउंड्स मारना, रोड साइड चाय की स्मेल, बच्चों की आवाज़ और थोड़ी सी फ्रेश हवा भी। अर्लियर इवनिंग वॉक्स वर नॉट जस्ट एक्सरसाइज, वो दे वर लाइक अ कल्चर। किसी के हाथ में न्यूज़पेपर, किसी के साथ दोस्त, किसी के बातों बातों में फैमिली बन जाना और दोस्त बन जाना और ग्रुप बन जाना। और कुछ लोग तो बस सनसेट देखने के लिए निकल जाते थे। इंटरेस्टिंग ये थिंग ये है कि आज भी डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स, ये सब लोग कहते हैं वॉकिंग को वन ऑफ सिंपलेस्ट एंड सेफेस्ट एक्सरसाइजेस। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग रेगुलर वॉकिंग कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, मूड, स्लीप एंड इवन कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल भी है और बेनिफिशियल भी। तो आखिर वॉकिंग बॉडी और माइंड दोनों के लिए इतनी अच्छी क्यों है? चलिए जानते हैं, बात करते हैं एक गाने के बाद।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और हम बात कर रहे थे इवनिंग वॉक्स के बारे में। सो इवनिंग वॉक्स सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प द बॉडी स्लो डाउन आफ्टर अ बिजी डे। दे हैव वेरियस बेनिफिट्स लाइक वॉकिंग इम्प्रूव्स ब्लड सर्क्युलेशन, इट हेल्प्स कंट्रोल स्ट्रेस, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। आफ्टर लाइट वॉकिंग डाइजेशन भी तो बेटर हो जाता है ना, स्लीपिंग क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है और स्क्रीन फैटिक भी कम होती है, स्पेशली टुडे जब लोग दिन में मोस्टली स्क्रीन के सामने रहते हैं। वॉकिंग बिकम्स अ स्मॉल रीसेट बटन। स्टडीज सजेस्ट करते हैं दैट इवन 20 to 30 minutes ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग डेली मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ लाइफ स्टाइल डिसीजेस, एंड मेंटली भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हैप्पी होते हैं हम लोग और खुश रहते हैं हमेशा, बिकॉज मूवमेंट चेंजेस द मूड टू।

0: Rainbow 101.9.
1: యొక్క బీమా కవచ్ మీ జీవిత అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉండే ఒక ప్యూర్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్. కీలకమైన లైఫ్ స్టేజెస్ లో మీ సమ్ అష్యూర్డ్ ని పెంపొందించుకునే అవకాశం, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రీమియం పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ 100 సంవత్సరాల వరకు అందుబాటులో ఉండే లైఫ్ టైమ్ రిస్క్ కవర్ తో ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండండి. ఎల్ఐసి హర్ పల్ ఆప్కే సాత్.
0: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
2: सो वेलकम बैक दोस्तों. तो हम बात कर रहे थे इवनिंग वॉक्स के बारे में, लेकिन इवनिंग वॉक्स जो है वो सिर्फ हेल्थी नहीं, वो रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव करते हैं. पहले लोग इवनिंग वॉक्स पे सिर्फ चलने नहीं, मिलने भी जाते थे, नेबर से मिलते थे, बच्चे खेलते थे, एल्डर्स गॉसिप शेयर करते थे. आज भी पार्क्स में देखिए, वॉकिंग ग्रुप्स मिल जाएंगे, लाफिंग क्लब्स मिल जाएंगे, और वो अंकल जो हर किसी को हेल्थ एडवाइस देते हैं, या वो आंटी जो हर किसी को नए नए रेसिपीज सिखाती हो. और समटाइम्स पीपल डोंट नीड बिग सॉल्यूशंस. एंड ऑनेस्टली ये जो लोनलीनेस को भगाने का तरीका जो है, इवनिंग वॉक्स बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. बस थोड़ी सी फ्रेश एयर और किसी से दो बातें. हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑफन से सोशल इंटरेक्शन एंड लाइट फिजिकल एक्टिविटी टुगेदर कैन पॉजिटिवली अफेक्ट इमोशनल वेल बीइंग. शाम की सैर बॉडी को ही नहीं, माइंड को भी फ्रेश करता है.

0: FM Rainbow 101.9।
1: So, हम बात कर रहे थे वॉकिंग के बारे में। वॉकिंग सिंपल ज़रूर है, बट कुछ बेसिक प्रिकॉशंस भी तो ज़रूरी है। जैसे कंफर्टेबल शूज़ पहनिए, बहुत हैवी मील के इमीडिएटली बाद फास्ट वॉक अवॉइड करिए, हाइड्रेटेड रहिए स्पेशली समर्स में, डार्क रोड्स या आइसोलेटेड प्लेसेस अवॉइड करिए, एल्डरली पीपल जो है कंफर्टेबल पेस में चलिए, और ईयरफोन्स का वॉल्यूम भी लो रखिए फॉर सेफ्टी। एंड इम्पॉर्टेंटली, वॉकिंग शुड फील रिफ्रेशिंग, नॉट एग्जॉस्टिंग। समटाइम्स फिटनेस का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग सिंपल हेल्दी हैबिट्स एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। समटाइम्स अ पीसफुल रोड, अ लिटिल फ्रेश एयर एंड 30

0: Rainbow 101.9।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हो रेनबो FM 101.9 और मैं हूँ आपकी RJ श्रिया। और अभी स्टूडियो के घड़ी में बज गया है 1, यानी कि आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो रेनबो का शुरुआत हो गया है। और आपको अगर हमें कॉल करना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0402323 0030 पर, या 0402323 4821, या 0402970 4715 पर। अगर आपने कॉल किया उसके बाद हम क्या बात करेंगे ये भी तो सुन लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ पर जो अभी हमने थोड़ी वक्त पहले बात किया था, समर में वॉकिंग, इवनिंग वॉक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो अभी आप बताइए, आप क्या करते हो समर्स में अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए? और आप अपने बातें हमसे शेयर कर सकते हो, और क्या करना चाहिए समर्स में अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए? और इस बारे में हम बात करेंगे एक गाने के बाद।

सो दोस्तों, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, और ये है जहाँ पे वक्त ये वक्त है जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हो. आप कॉल कर सकते हो 0402323-0030, 0402323-4821, या फिर 0029704715 पर. तो आप हमसे जुड़िए और हमें बताइए कि आप अपने आप को समर में एनर्जेटिक रखने के लिए क्या-क्या करते हैं. ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो करना चाहिए हमें अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, आप हमें बता सकते हैं हमें कॉल करके. तो बेसिक चीज़ें तो जैसे कि पानी पीना, और अगर कुछ आपके शुगर लेवल्स डाउन हो गए या फिर कुछ हुआ तो डिजीनेस फील हो रहा तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना, इस तरह तो करना चाहिए. और क्या चीज़ें हैं जो आप करते हो? हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ज़रूरी है. और क्या क्या चीज़ें हैं आप हमसे शेयर कर सकते हो हमें कॉल करके. और तब तक आप सुनिए एक गाना.

0: तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। हेलो रेनबो, हेलो रेनबो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब मैडम जी.
0: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम?
1: जी शेर खान बोल रहा हूँ सर, आपका टामन नगर से. जी
0: जी शेरकान जी, तो आपने टॉपिक सुना है सर?
1: जी सुना हूँ. और मैं सभी भाई बहनों को, दोस्तों को, आपको प्यार भरा सलाम आदाब कहता हूँ.
0: जी
1: अल्लाह से
0: सर,
1: दुआ करता हूँ आपको सभी को हमें

0: अच्छा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे हर मौसम में।
1: जी, तो
0: जी
1: कहिए सर, समर में ऐसे कौन सी चीज़ें करना चाहिए जिससे हम एनर्जेटिक रह सकते हैं?
0: सबसे पहले तो धूप से बचना चाहिए,
1: जी
0: धूप से बचना चाहिए, छांव में रहना और मटके का पानी पीना चाहिए, फ्रिज वगैरह की ज्यादा चीजें नहीं लेना चाहिए, फ्रिज का पानी वगैरह
1: जी
0: रंजन मटका मट्टी का मटका जो होता है उसका पानी पीना चाहिए। और मैं तो ब्लाइंड हूँ मैडम जी, श्रेया जी, तो मैं घर में ही रहता हूँ और मुझे भी बहुत गर्मी लगती है, तो मैं सुबह सुबह भी ठंडे पानी से नहा लेता हूँ और शाम होते होते भी फिर ठंडे पानी से नहा लेता हूँ
1: जी सर
0: और पानी पानी पीता रहता हूँ बस, नारियल पानी मटके का पानी ये बस जो भी है, ठंडक पसंद है मुझे भी बहुत।
1: जी सर
0: लापरवाही नहीं करना चाहिए हमको इस मौसम में, मतलब कैसा जुनून में आके लापरवाही कर देते हैं, भूल जाते हैं तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है हमको,
1: जी
0: तो लापरवाह नहीं रहना चाहिए। और
1: जी
0: श्रेया जी मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाह रहा हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो अगर मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो। हाँ
1: सर सर हेलो
0: जी सर बोलिए।
1: हेलो
0: हाँ मैडम बोलिए।
1: हेलो, सुन रही दे रहा है सर आपको? शायद लाइन कट हो गया है, हम अभी बढ़ेंगे अगले कॉलर की तरफ। हेलो, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट सॉन्ग सुनेंगे।
2: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు, మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎన్యూమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
3: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.
1: तो चलिए अभी हम लेंगे एक अगले कॉलर को। हेलो,
4: हेलो, गुड आफ्टरनून,
1: गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आपका नाम?
4: मेरा नाम सुषमा है, ऑनर हूँ क्या?
1: जी,
4: ओके, थैंक यू श्रेया, आज फर्स्ट टाइम आप आए ना?
1: जी,
4: या
1: आपने टॉपिक सुना मैम?
4: या आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं बात कर रही.
1: जी,
4: मेरा नाम सुषमा है.
1: सुषमा जी कहिए सुषमा जी.
4: या मैं सर्दी, ये क्या गर्मी से तो धूप में तो ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए. अगर काम पड़े तो जब उसके लिए थोड़ा लाइट वेट जो अपने ड्रेसेस रहते ना वो लाइट ही यूज करना चाहिए.
1: जी,
4: कलर्स में डार्क नहीं पहनना ये गर्मियों में. और क्या है, थोड़ा कूल वे जैसा यूज करना. और मैं सबसे बड़ी बात तो ये बोलना चाहूंगी, देखो बचपन से मेरे मम्मी डैडी ना तुलसी का झाड़ हमारे घर में रहता था, उसका पूजा और उसका पानी मालूम हम लोग पीते थे माँ. वो आदत हम लोगों को है, वो पत्ते डाल के हम लोग पीते, उससे इतना एनर्जेटिक रहता मालूम आते सारा दिन. तो क्या जिंदगी भर आपको लाइफ डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप परमानेंट उसको अपना लोगे ना. वो पत्ते और ये जो नीम है और वो मीठा नीम करिया पाक बोलते ना.
1: जी,
4: हाँ, ये जो नेचुरल जो है ना अपने पेड़ पौधे उनसे अगर अपन कांटेक्ट में रहे, मतलब जुड़ के रहे समझो उनसे, तो अपने हेल्थ को भी बहुत अच्छा रहेगा. और और आजकल देखो बच्चों को कितने बेकार आदत हो गए ना, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या निकल रहा है, बेचने वालों को बंद नहीं कर रहे. अगर वही अगर हम तुलसी के पौधे लगा देंगे तो क्या खाने में ड्रग मिलेगा क्या कभी, क्या हम लोगों को मिला था क्या कभी, मैं ये बोलना चाहूंगी. जैसे हम लोग अभी तुलसी का झाड़ बहुत बहुत लोगों को मालूम है, जो पुराने लोग हैं उन लोगों को सबको मालूम है घर में पूजा करते और उसका पानी पीते मालूम।
1: जी, जी,
4: और
1: जी।
4: वो तीर्थ से वो जो रहता ना उसको प्रसाद रूप में लेते, और अगर वो सुबह सुबह लिए या पानी में डाल के भी आप रख लिए तो

0: आपको सर्दी तो क्या है, कोई भी 12 महीने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
1: जी
0: मैं
1: बहुत
0: ये
1: शुक्रिया
0: बोलना
1: सुषमा
0: चाहूंगी
1: जी
0: ना, इसीलिए मैं एनर्जेटिक रहती क्योंकि मैं नेचुरलिटी से बहुत जुड़ के रहती।
1: जी जी जी
0: थैंक यू,
1: आपने
0: आपने मेरे को टाइम दिया।
1: जी जी
0: थैंक
1: शुक्रिया
0: यू सो मच।
1: शुक्रिया सुषमा जी। अभी बढ़ते हैं हम अगले कॉलर पर, कॉलर के पास। हेलो रेनबो जी। हेलो सर, आपका नाम?
2: मैं हिंदुस्तानी दिल से हैदराबाद जयपाल बात कर रहा हूँ।
1: जी सर, सर आपने टॉपिक सुना है?
2: जी हाँ मैडम, सुना।
1: जी सर, बताइए आप अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए समर में क्या करते हैं और
2: जी
1: दूसरों
2: हाँ,
1: को क्या
2: इसका
1: कहना चाहेंगे?
2: जी हाँ, ये मौसम में खुसूसन मैं 1 महीना पहले कपड़े काटन के पहनता हूँ। काटन कपड़ा और बाल वगैरह छोटे कर लेना इसमें,
1: जी
2: खाने के बॉडी को मेडिसिन यही एक अच्छा है कि ठंडक में रखना, कपड़े से लेके खाने में लेके हर चीज ठंडी इस्तेमाल करना तो बॉडी मुतदिल रहती। और ज्यादातर लाइटों में नहीं रहना,
1: जी
2: ठंडी छाव में रहना, और लाइट में भी जो गर्मी आती वो गर्मी में नहीं रहना, और एसी में बहुत कम रहना,
1: जी
2: एसी से दूसरा रिएक्शन पैदा होता बॉडी में। कूलर वगैरह में रहना, ठंडी छाव में रहना, और बाग बगीचे के फूला देख के बहुत अच्छा दिखता मैडम। इसके वाले में फूला कम खिलते हैं मगर अपने घरों में लगा लिए थे फूल तो बहुत अच्छे दिखते। और एक बात है, आज सुबह में जो गाने लगाए आप इकबाल कुरैशी के वो
1: जी
2: बहुत शानदार थे, आपको
1: जी
2: सूट है गानों पे। और
1: शुक्रिया
2: दुकान के
1: सर।
2: टाइम में ये गाने अगर ऐसे सुने म्यूजिक के तो जहन और सुकून दिखता, और अच्छी म्यूजिक के गाने थे। ये
1: जी जी
2: म्यूजिक भी धुपकाले में बहुत अच्छा काम करती है।
1: शुक्रिया
2: अच्छा,
1: सर।
2: इतना ही कहना था।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गाना।
3: నేను ఎం శ్రీనివాస్, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, హైదరాబాద్. పిల్లల పరంగా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు 1098కు కాల్ చేయండి. 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్.
4: Rainbow 101.9.

0: गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चलिए अभी बढ़ते हैं अगले कॉलर के साथ, जुड़ेंगे हम अभी। हेलो, चलिए शायद लाइन कट गया है, एक और बार देखेंगे। हेलो
3: हेलो मैडम जी, एक गाने की रिक्वेस्ट थी, अगर आप पूरा कर देंगे।
2: जी सर, आपने पहले सुना क्या सर क्वेश्चन? आपका नाम कहिए सर।
3: हाँ जी, शेर खान बोल रहा हूँ, मेरा कॉल कट गया था, आवाज कट गई थी आपसे।
2: जी सर, सॉन्ग कहिए सर।
3: हाँ सर, ये जी मैडम, ये है, फिल्म का नाम है अनुराग।
2: अनुराग, ओके सर। सॉन्ग का नाम सर?
3: बोल है, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, वो क्या है, एक मंदिर है, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज।
2: जी सर, जी सर, मैं देखूंगी सर,
3: अगर आप ढूंढ लेंगी तो। जी सर, मेहरबानी, बहुत प्यारा गीत है ये।
2: जी सर, जरूर सर। ओके सर, थैंक यू। अभी हम बढ़ेंगे अगले कॉलर के पास। हेलो
4: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
2: नमस्कार सर, आपका नाम?
4: मेरा नाम राजकुमार है, निजामाबाद से बात कर रहा हूँ मैडम जी।
2: जी राजकुमार जी, आपने टॉपिक सुना सर?
4: हाँ मैडम जी, सुना है।
2: जी सर,
4: आने का भी?
2: जी आने सर, जी सर।
4: ओके मैडम, ओके। मैं ये धूप काले से बचने में लिए मैडम जी, हमारा जैसा सीनियर सिटीजन
2: जी
4: जरा खुला झाड़ के साथ नीचे छांव में एक नवारा पलंग डाल लेके, एक घड़ा पानी रख लेके, ठंडा गाना सुनते बैठे तो बहुत मजा आता मैडम
2: जी। जी,
4: गर्म महसूस नहीं होता। और ये खानों को जरा बन लेना अपन, ये गर्म हवा से बचना।
2: जी सर,
4: वो इम्पोर्टेंट है मैडम।
2: ओके सर,
4: घर में बैठे तो पूरा यही चाहिए, एयर कंडीशन, वो ये रहता मैडम, अच्छा है हमारे लिए, लोगों को तो बहुत अच्छा है।
2: जी जी,
4: बोल पीपल को।
2: जी जी,
4: थैंक यू मैडम जी, थैंक यू,
2: थैंक यू सो मच सर। अभी चलिए बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। हेलो रेनबो, हेलो रेनबो,
5: हेलो रेनबो मैडम जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, आपका नाम सर?
5: मैं भरत बोल रहा हूँ सर, बनारस।
2: जी सर, आपने टॉपिक सुना?
5: जी सुना
2: जी, तो कहिए सर, समर में क्या करना चाहिए अपने अपने एनर्जेटिक रखने के लिए?
5: समर में तो खाने पीने को विशेष ध्यान देना चाहिए
2: जी,
5: जैसे वो हल्का भोजन करना चाहिए, दाल चावल है, पत्तीदार हरा सब्जी जो पालक है उसको दाल में डालकर, और छाछ है, दही है इसका सेवन करना चाहिए, तरबूज है
2: जी,
5: खीरे ककड़ी है उसका सलाद बनाकर खाना चाहिए, ठंडा पदार्थ जो है खाने वाला जिससे शरीर को ठंडक पहुंचे, और मटके का पानी जो ठंडा ठंडा रहता है वो पीना चाहिए
2: जी,
5: और धूप से बचना चाहिए, जैसे धूप में अगर इमरजेंसी हो कहीं तो बाहर निकले तो तौली या गमछा सर पे रख करके निकले, ऐसे बचाव करना चाहिए, करते भी है।
2: ओके सर, शुक्रिया सर।
5: मैडम एक गाने का रिक्वेस्ट।
2: जी सर, कहिए सर।
5: गाने है, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले।
2: जी सर, मैं देखूंगी सर, अगर हमारे स्टूडियो में अवेलेबल है तो हम जरूर प्ले करेंगे। शुक्रिया सर,
5: थैंक यू मैम।
2: अभी हम देखेंगे अगले कॉलर कौन है। हेलो रेनबो, हेलो, नमस्कार सर, आपका नाम सर?
6: నేను గరికపాటి వారిని మాట్లాడుతున్నానమ్మా.
2: నమస్కారం సార్, చెప్పండి సార్, టాపిక్ విన్నారా సార్?
6: విన్నాను, సమ్మర్ కదా.
2: అవును సార్, చెప్పండి సార్.
6: మీ పేరు?
2: శ్రియా సార్, శ్రియా.
6: శ్రియా అంటే మనకి హీరోయిన్ కూడా ఒక ఆమె వస్తుంది, శ్రియా మీరేనా?
2: లేదు, హీరోయిన్ కాదండి, నేను ఆర్జే అండి. చెప్పండి సార్, మీ టాపిక్
6: పక్కనే ఒకటి యాక్షన్ చేసింది కదా?
2: అవును సార్, అవును సార్, ఆవిడ పేరు కూడా శ్రీయానే.

0: Rainbow 101.9.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: తరం మారింది శ్రీ చైతన్య సిద్ధమైంది.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो भाई 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 రెయిన్బోతో జీవితం రంగులమయం. డబుల్ కమిటం వింటున్నారు నాతో ఆర్జీ రేణుతో.
3: కోపం వస్తే మండుటెన్

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM Rainbow 101.9

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

FM 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 9:30 हो रहे हैं और अब पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

आज के नए रंग का आगाज होगा हर्फ़ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश होगी मोहतरमा फहमीदा फहमोश की।

फिर इसके बाद बेदारी कायनात के तहत जनाब एम हई सेहत के मौजू पर एक मालूमाती गुफ्तगू पेश करेंगे, जिसमें मुनासिब नींद, जिस्मानी सरगर्मियों और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। और इसके बाद पेश किया जाएगा खूबसूरत नगमों से सजा प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जा, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे दिलकश और यादगार नगमे जो यकीनन आपके दिलों को ताजगी और खुशी का एहसास बख्शेंगे। और प्रोग्राम के अख्तिताम में पेश होगा पयाम शब, तहरीर व पेशकश होगी जनाब जैदी साहब की। इसके साथ आज का नया प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचेगा। तो चलिए आज के नए रंग प्रोग्राम का आगाज करते हैं हर्फ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश होगी मोहतरमा फहमीदा फहमोश की।

0: मेहनत, हौसला और खुद एतमादी के इम्तिजाज का नाम ही तहरीक या मोटिवेशन है। जिंदगी फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का सफर है। इस सफर में वही शख्स अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है जिसके पास मोटिवेशन यानी आगे बढ़ने का सच्चा जज्बा हो। ये वो अंदरूनी ताकत है जो इंसान को उस वक्त भी खड़ा रखती है जब पूरी दुनिया उसे गिराने पर तुली हुई हो। कामयाबी की पहली सीढ़ी एक पुख्ता इरादा है। अगर इंसान ये ठान ले कि उसने जीतना है तो आधी जंग वहीं जीत ली जाती है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दुनिया के बड़े बड़े लोग कई बार नाकाम हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि सीखने का अमल जो है उसे जारी रखा। हिम्मत वो नहीं जो कभी ना गिरे बल्कि हिम्मत वो है जो हर बार गिरकर दोबारा उठ खड़ी हो। कामयाबी किसी हादसे का नाम नहीं बल्कि ये मुस्तकिल मिजाजी, कुर्बानी और अपने काम से मोहब्बत का नतीजा है। अगर आपके पास ख्वाब है तो उनके लिए लड़ने का हौसला भी पैदा करें। याद रखें, सूरज की तरह चमकने के लिए पहले सूरज की तरह जलना पड़ता है। सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं, उनकी ताबीर के लिए बिस्तर छोड़ना पड़ता है। याद रखें, एक छोटा सा अमल हजारों बड़े इरादों से बेहतर है। अपनी कामयाबी का शोर मत मचाएं, बल्कि इतनी खामोशी से मेहनत करें कि आपकी कामयाबी खुद बोलने लगे। वक्त वो दौलत है जो एक बार खर्च हो जाए तो दोबारा कमाई नहीं जा सकती। जो आज वक्त को जाया करता है, कल वक्त उसे जाया कर देता है। मोटिवेशन के दौरान मुश्किलात का सामना कैसा करें? जी हाँ, लोहा तब तक तलवार नहीं बनता जब तक वो आग में तपता नहीं और हथौड़े की चोटें नहीं सहता। आपकी जिंदगी की मुश्किलात दरअसल आपको तराश रही है। मनफी सोच से बचें। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, उनकी बातों को दीवार बनाकर रुकावट ना समझे बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते जाएं। बकौल शायर, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुल व गुलजार होता है। इंसान की असलियत तब पता चलती है जब वो मुश्किल में होता है। हिम्मत हारना आसान है लेकिन मुश्किल वक्त में जमे रहना ही असल बहादुरी है। अगर आप खुद को एक आम पत्थर समझेंगे तो दुनिया आपको पैरों तले रोंद देगी, लेकिन आप खुद को हीरा समझेंगे तो दुनिया आपको सरांखों पर बिठाएंगी। इसीलिए अपनी अहमियत पहचाने। सूरज और चांद का आपस में कोई मुकाबला नहीं। इसी तरह दूसरों से अपना मुआवजना करके खुद को कमतर ना समझे। अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं जो आज तक नहीं मिला तो आपको वो काम करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया, यानी आरामदा जोन से बाहर निकलना ही तरक्की की पहली शर्त है। जब आपकी नीयत साफ होती है तो कायनात के तमाम रास्ते आपके लिए आसान होना शुरू हो जाते हैं। मंजिल मिले ना मिले, सफर का खुलूस जरूर रंग लाता है। बकौले शायर, हजारों मंजिलें होगी हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होगी हजारों कारवां होंगे, निगाहें ढूंढेंगी जिनको वो हम ही होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक खुद हार मानने का फैसला ना कर ले। आपकी सबसे बड़ी जीत आपके अपने नफ्स पर जीत है। मंजिल पर पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल काम होता है। जो शुरू कर देता है वो आधा सफर तय कर लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट नाकामी नहीं बल्कि नाकामी का खौफ है। शाही के साथ उड़ना है तो कबूतरों की सोहबत छोड़नी होगी। अपनी महफिल बदले, आपकी सोच खुद ब खुद बदल जाएंगी। बकौले शायर, खुद से लड़ते हैं जो वो तारीख बदल देते हैं, खुद से लड़ते हैं जो वो तारीख बदल देते हैं, जमाने की हवाओं का रुख मोड़ देते हैं।
1: जी हाँ सामीन, आप समाप्त कर रहे थे मोहतरमा फहमीदा फहमोश से प्रोग्राम हरफ़े ताबिंदा, जिसके तहत मेहनत और हौसला के उन्वान पर एक नहायत पुर असर, फिक्रंगेज़ और हौसला अफजा गुफ्तगु पेश की गई। सामीन, ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से हासिल नहीं होती बल्कि ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मुसलसल मेहनत, पुख्ता इरादा और मजबूत हौसला दरकार होता है। इंसान की राहों में मुश्किलात, नाकामियां और आजमाइशें जरूर

0: आती हैं, मगर यही मुश्किलात इंसान को मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का हौसला अता करती है। वही लोग तारीख में अपना नाम रोशन करते हैं जो हालात के सामने झुकने के बजाय साबित कदमी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। जब इंसान अपने मकसद पर यकीन रखता है तो अंधेरी रातों में भी उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगती है। आज की इस खूबसूरत गुफ्तगू ने हमें ये पैगाम दिया कि अगर इंसान अपने अंदर एतमाद, मेहनत का जज्बा और बुलंद हौसला पैदा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकती। अजीम शायर और मुफक्किर इस्लाम अल्लामा इकबाल ने नौजवानों के अंदर खुदी, अज़्म और बुलंद हिम्मती का जज्बा बेदार करते हुए क्या ही खूब फरमाया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यकीनन ये शेर हमें खुद एतमादी, हौसले और अपने मकसद पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। तो आइए हम अपनी ज़िंदगी में मेहनत को अपना शियार बनाएं, मायूसी को खुद से दूर रखें और हर मुश्किल का मुकाबला हिम्मत और हौसले के साथ करें। सामीन, आइए अब इसी खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बेदारी कायनात के तहत जनाब एम ए हाई साहब से सेहत के मौजू पर एक मालूमाती और फिक्र अंगेज गुफ्तगु सुनते हैं।
1: हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि 24 घंटों के दौरान नींद, जिस्मानी सरगर्मी और बैठे रहने के अवकात की तकसीम तवील उलमुद्दती सेहत पर गहरे असरात मुरतब करती है और सेहतमंद बुढ़ापे के लिए मुनासिब नींद और जिस्मानी सरगर्मी दोनों का होना नागुज़ीर है। एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक सिर्फ 9.12% अफराद ही बैक वक्त रोज़ाना तजवीज़ करदा 8,000 कदम चलने और 7 से 9 घंटे की नींद पूरी कर पाते हैं। तहकीक में ये भी बात सामने आई है कि नाकाफी नींद के मनफी असरात अगले दिन की जिस्मानी सरगर्मियों पर मुरतब होते हैं, जिससे जाहिर होता है कि मुनासिब नींद हासिल करना जिस्मानी सरगर्मी की सतह बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। जोश फिटन का कहना है कि इनके डेटा के मुताबिक सिर्फ एक छोटा सा तबका ही मामूल के मुताबिक मुनासिब नींद और मतलूबा जिस्मानी सरगर्मी हासिल कर पाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तनाजुर में नींद और जिस्मानी सरगर्मी से मुतालिक अवामी सेहत की हिदायत की अमली मुताबिकत पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ मुतालियात से ये बात साबित हो चुकी है कि मुनासिब नींद और जिस्मानी सरगर्मी दोनों ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए नहायत अहम है। नाकाफी नींद और जिस्मानी सरगर्मी की कमी को अलग अलग तौर पर डिप्रेशन, मोटापे, ज़ियाबतीस, दिल के अमराज, सोजिश और मजमूई तौर पर अमवात के ख़तरे में इजाफे से जोड़ा गया है। इस तहकीक में 3 साल और 5 माह के दौरान 244 मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले 70,963 अफराद के डेटा के तज्जिए के ये तमाम अफराद दस्तियाब करदा हेल्थ ट्रैकिंग आलात इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें गद्दे के नीचे नस्ब नींद की पैमाइश करने वाला सेंसर और फिटनेस ट्रैकर शामिल थे। नींद की पैमाइश करने वाले सेंसर से हासिल होने वाले डेटा की बुनियाद पर मुहक्किकीन ने नींद के दौरानिये, नींद आने के वक्त और नींद की इफादियत का हिसाब लगाया, यानि बिस्तर पर मौजूद वक्त में से कितना वक्त वाकई नींद में गुजरा। नतायज के मुताबिक सिर्फ 9.12% शर्का ऐसे थे जो 7 से 9 घंटे की नींद के साथ रोज़ाना कम अज़ कम 8,000 कदम भी मुकम्मल कर पाए। इसके बरक्स 5.16% अफराद ऐसे थे जिनकी औसत नींद 7 घंटों से कम और रोज़ाना कदमों की तादाद 5,000 रही, जो बैठे रहने वाले तर्ज ज़िंदगी की बालाई हद समझी जाती है। मज़ीद ये कि तकरीबन 64% अफराद 7 से 9 घंटे की नींद और कम अज़ कम 5,000 रोज़ाना कदमों का इम्तिज़ाज भी

हासिल न कर सके। सन 2022 ईस्वी में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मालजीन का कहना है कि मरीजों से ये पूछना कि वो कितने घंटे सोते हैं इतना ही ज़रूरी है जितना कि इनका ब्लड प्रेशर, खुराक और सेहत से मुतालिक दीगर सवालात करना। ताहम कई अफराद को नींद आने में मुश्किलात पेश आती। कई लोग रात भर काम करते हैं और दिन को सोते हैं। कई गैर मुल्की खबरसां इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूरो साइंसदान का मानना है कि हमारी नींद का वक्त भी इतना ही अहम है जितना नींद का दौरानिया। जब हमारी सोने की रूटीन बायोलॉजिकल साइकिल से मुमासलत नहीं रखती तो इब्तदाई तौर पर हमें ज़्यादा भूख का एहसास होता है, खून में शुगर और ब्लड प्रेशर में इजाफा होने लगता है। मुख्तसर मुद्दत के लिए यह जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर ये रूटीन कई महीनों और सालों तक जारी रहे तो दिमागी बीमारी, ज़ियाबतीस, अमराज खल्ब जैसे बीमारी समेत और इसके अलावा वज़न में इजाफा हो सकता है। जिल्द इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा आज़ू है, मगर क्या आपको मालूम है कि ये अमराज की पेशगोई भी करती है? जी हाँ, कुछ अमराज का सबसे पहले इशारा जिल्द पर ज़ाहिर होता है, मगर क्या आप इन अलामात से वाकिफ़ हैं जो जिल्द मुख्तलिफ अमराज के लिए ज़ाहिर करती हैं? बर्स। आमतौर पर बर्स नामी इस मर्ज के बारे में यह ख्याल आम है कि यह मछली खाने के बाद दूध पीने का रिएक्शन होता है, ताहम तिब्बी साइंस इसको रद्द करती है। दरहकीकत यह उस वक्त लाहक होता है जब जिल्द को उसकी कुदरती रंगत देने वाले खलियात मखसूस रंगदार मादा की तैयारी छोड़ देते हैं। जिल्द पर नुमाया सफ़ेद धब्बों का नमूदार होना दरहकीकत जिस्मानी दिफाई निज़ाम की जानिब से जिल्दी खलियात पर जिस्मानी दिफाई निज़ाम की जानिब से जिल्दी खलियात पर हमला करना होता है, जो जिल्द को रंग देने वाले जुज मिलाइन पर होता है। ताहम यह दीगर आटो इम्यून अमराज जैसे थायराइड अमराज की अलामत भी हो सकता है। सोजिश जिल्द यानि खुश्क, खुजली और जिल्द पर सुर्ख निशानात आम तौर पर गर्दन या कोहनियों के पास जाहिर होते हैं। ये काफ़ी आम जिल्दी मर्ज हैं जो बच्चों बड़ों दोनों को हो सकता है, मगर यह जहनी सेहत में ख़राबी की अलामत भी हो सकता है। एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक डिप्रेशन या तनाव के जहनी आरिज़ों के शिकार अफराद जिल्दी मर्ज में मुब्तला होते हैं। ताहम जिल्द की सोजिश का इलाज कराने से जहनी सेहत में भी बेहतरी आती है। खुले जख्म, ब्लड शुगर तवील अरसे तक बढ़ी रहे तो इसके नतीजे में खून की गर्दिश मुतासर और आसाब को नुकसान पहुंचता है। इसके नतीजे में जिस्म के जख्म भरने की सलाहियत मुतासर होती है, ख़ास तौर पर पैरों में ये जख्म नज़र आते हैं जिन्हें ज़ियाबतीस का नासूर भी कहा जाता है। चुंबल, इस जिल्दी मर्ज में जिल्द पर छिलके से नमूदार हो जाते हैं जबकि खुजली और ख़ारिज भी होती है, मगर ये कुछ संगीन तिब्बी मसाइल की जानिब इशारा भी कर रहे होते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस जिल्दी कैफियत के शिकार अफराद में दिल के अमराज का इम्कान 58% जबकि फालिज का ख़तरा 43% ज़्यादा होता है। माहिरीन ने बताया कि चुंबल और खून की शिरियानों में खून का जमना वरम के बास होता है और ये चीज़ें दोनों को आपस में जोड़ती हैं। गुलाबी दाने, इस मर्ज में जिल्द सुर्ख हो जाती है और गुलाबी रंग के दाने निकल आते हैं। अक्सर अफराद इसका इलाज नहीं कराते क्योंकि वो इसे नुकसानदेह नहीं समझते, मगर एक नई तहकीक के मुताबिक यह कैफियत ख्वातीन में डेमिनीशिया के मर्ज का ख़तरा 28% तक बढ़ा देती है, ख़ास तौर पर अगर उम्र 50 या 60 साल से ज़ायद हो। खुश्क और फटी हुई जिल्द वाले पैर, ये मुमकिन तौर पर थायराइड, सांस की नाली के करीब मौजूद गुदूद में मसाइल की अलामत हो सकते हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त जब पैरों की नमी का ख्याल रखना बेकार साबित हो। जब थायराइड गुदूद में मसला हो तो वो थायराइड हार्मोन्स को तैयार करने से खासिर हो जाता है, जो कि मेटाबॉलिक रेट, ब्लड प्रेशर, पट्ठों की नशोनुमा और आसाबी निज़ाम वगैरह के लिए काम करते हैं। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक थायराइड के मसाइल के नतीजे में जिल्द इंतहाई खुश्क हो जाती है, ख़ास तौर पर पैरों की जिल्द फटने लगती है और हालत में बेहतरी ना आने पर डॉक्टर का रुख करना ही
फायदा मंद होता है।

0: हाथों में पसीना आना, यानी अगर हाथों पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो ये थायराइड अमराज के साथ साथ जिस्म से ज़रूरत से ज़्यादा पसीने के अखराज का मसला भी हो सकता है, जिसमें पसीना खारिज करने वाले गुदूद ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं। अक्सर अफराद को इस मसले का सामना जिस्म के एक या दो हिस्सों में होता है, जैसे बगलें, हथेली या पैर। डॉक्टर इसका मुआयना करके इलाज तजवीज़ करते हैं। सियाह गुमड़ या तिल, आमतौर पर बहुत नुमायाँ सियाह तिल या गुमड़ जिल्द के कैंसर की अलामत साबित हो सकते हैं, जबकि ब्रेस्ट कैंसर, मसाने और गुर्दे के कैंसर का ख़तरा भी इन्हीं की वजह से बढ़ जाता है। माहरीन के मुताबिक सूरज में कम घूमना, मुतहरिक रहना, सेहत बख्श ग़िज़ा और अल्कोहल से दूरी इस तरह के जानलेवा कैंसर से बचने के लिए ज़रूरी है। सामान्यक्रम, क्या आप जानते हैं कि हमारी सांसों और खाने पीने के पानी में एक ऐसा ख़तरनाक अंसर आहिस्ता आहिस्ता सराइयत करता जा रहा है जो आँखों से ओझल है लेकिन पूरे जिस्म में खामोशी से अपनी जगह बना चुका है? ये प्लास्टिक के बारीक ज़र्रात होते हैं जो माइक्रो प्लास्टिक कहलाते हैं। इनका हजम 5 मिलीमीटर या इससे कम होता है। इनसे भी छोटे ज़र्रात को नैनो प्लास्टिक्स कहते हैं, जिनका हजम 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोन के दरमियान होता है। ये इतने बारीक होते हैं कि आसानी से हमारे खलियात की हिफाजती झिल्ली को पार करके अंदर दाखिल होकर हमारे जिस्म के निज़ाम को बिगाड़ सकते हैं। जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक ये ज़र्रात ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सोजिश और जीनियाती सतह पर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फी ज़माना प्लास्टिक की अशिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, चाहे वो खाने पीने के बर्तन हो, पैकिंग का सामान हो, बोतलें, प्लास्टिक के बैग, हत्ता के बावर्ची खाने के चम्मच जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, इन सब में वक्त के साथ ये ज़र्रात पनपने लगते हैं। ख़ास तौर पर जब प्लास्टिक की चीज़ें किसी भी वजह से गर्म हो जाएं या रगड़ लगे तो ये माइक्रो प्लास्टिक खाने और पानी में शामिल हो जाते हैं। ये ज़र्रात इतने हल्के और बारीक होते हैं कि हवा में तैरते रहते हैं और हम इन्हें सांस के ज़रिए अंदर दाखिल कर लेते हैं। सन 2022 ईस्वी में की जाने वाली एक और तहकीक में 80% अफराद के खून के नमूनों में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए, जबकि साइंसदानों का ये भी कहना है कि ये ज़र्रात किसी फ़र्द के दिमाग में भी दाखिल हो सकते हैं। दिमाग की कुदरती हिफाजती दीवार, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है, आम हालात में नुकसानदा ज़र्रात को दिमाग तक पहुंचने से रोकती हैं, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक इतने बारीक और मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं कि ये इस रुकावट को उबूर करने में कामयाब हो जाते हैं। नेचर मेडिसिन में शाये की जाने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि इंसानी दिमाग में माइक्रोप्लास्टिक की मकदार पिछले 20 बरसों में तकरीबन 50% बढ़ गई है, जबकि अल्जाइमर के मरीजों में ये ज़र्रात 10 गुना ज़्यादा पाए गए हैं। लिहाजा ये ज़र्रात दिमागी अमराज लाहक होने के इम्कान में इजाफे का सबब बन सकते हैं या इनकी शुरुआत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दिमाग के अलावा ये ज़र्रात जिगर, गुर्दे और दिल की शरियानों में भी पाए गए हैं। इटली में की जाने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जिन अफराद के खून की शरियानों में माइक्रो प्लास्टिक्स मौजूद थे, इनमें दिल का दौरा, फालिज या अचानक मौत का ख़तरा 4 से 5 गुना बढ़ गया था। यह ज़र्रात शरियानों में सोजिश और प्लेक बनाने का अमल तेज़ करते हैं, जिससे खून की रवानी मुतासिर होती है और संगीन अमराज पैदा हो सकते हैं। ये असरात सिर्फ जिस्मानी अज़ा तक महदूद नहीं रहते बल्कि हमारे हारमोन्स पर भी असरअंदाज होते हैं। प्लास्टिक में मौजूद बास केमिकल्स जैसे बायोसफेनॉल ए और पैथलेट्स हार्मोनल निज़ाम को बिगाड़ देते हैं। ये मुरक्कबात तौलीदी सेहत भी मुतासिर करते हैं, थायराइड के अफाल में खलल डालते हैं और हामिला ख्वातीन में बच्चों की नशोनुमा पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। इस तरह ये ज़र्रात न सिर्फ मौजूदा बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी ख़तरा बन जाते हैं।
1: जी हाँ सामीन, अभी आप बेदारी कायनात के तहत जनाब एम ए हाई से सेहत के

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

सादगी, खूबसूरत बोल और दिल को छू लेने वाली मौसीकी की वजह से आज भी बहुत पसंद किया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा और यादगार नगमा।

पुराना है। लता मंगेशकर की दिलकश आवाज़ ने इस गीत को और भी खूबसूरत बना दिया है। ये नगमा मोहब्बत के खूबसूरत एहसासात को बहुत सादा और प्यारे अंदाज में बयान करता है, इसीलिए आज भी लोगों के दिलों में अपनी ख़ास जगह रखता है। उम्मीद है कि आज की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। सामिन, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे भी आते हैं जब इंसान अपने दर्द और जज्बात को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाता। दिल में छुपी शिकायतें, खामोश एहसासात और अपनों की बेरुखी इंसान को अंदर ही अंदर उदास कर देती है, और फिर कुछ गीत ऐसे बनते हैं जो दिल की उन्हीं कैफियतों को बहुत खूबसूरती से बयान कर देते हैं। अब हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं फिल्म जुल्म का एक खूबसूरत और दर्द भरा नगमा, जुल्म तूने जुल्म किया। इस गीत को अपनी खूबसूरत और दिलकश आवाज़ में पेश किया है आशा भोसले ने। अपनी सादा शायरी और दिल को छू लेने वाले अंदाज की वजह से ये गीत आज भी मौसीकी पसंद करने वालों के दिलों में अपनी जगह रखता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत और एहसास से भरपूर नगमा।

सामीन, आपने सुना फिल्म जुल्म का दर्द भरा और दिल को छू लेने वाला गीत, जुल्मे तूने जुल्म किया। यकीनन इस नगमे में छुपा दर्द, शिकवा और जज्बात आपके दिल तक ज़रूर पहुँचे होंगे। आशा भोसले की खूबसूरत आवाज़ ने इस गीत के एहसास को और भी गहरा बना दिया है। कभी-कभी कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, और ये नगमा भी उन्हीं खूबसूरत गीतों में शामिल है। उम्मीद है आज की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। सामीन, मौसम खुशगवार हो और दिल में हल्की सी मोहब्बत की कैफियत हो तो पुराने हसीन गीत खुद ही लबों पर आ जाते हैं। ऐसे गीत जो सादा हो मगर सीधे दिल तक पहुंच जाए। तो आइए इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म पाकीज़ा का एक नहायत खूबसूरत और यादगार नगमा। इस गीत को अपनी मीठी और दिलकश आवाज़ में पेश किया है लता मंगेशकर ने। अपने खूबसूरत बोल, नरम मौसीकी और दिल को छू लेने वाले अंदाज़ की वजह से ये गीत आज भी मौसीकी पसंद करने वालों के दिलों में जिंदा है। तो आइए सुनते हैं प्यारा और दिलकश नगमा।

0: تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، ہر مسکراہٹ، ہر مسافہ اور ہر نرم لہجہ سچی محبت یا اخلاص کی علامت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ محض رسم، مفاد یا دنیوی تعلق کی خاطر قریب آتے ہیں لیکن دل سے مخلص نہیں ہوتے۔ ہر ملنے والے کو دوست نہ سمجھیں، وقت لیں، لوگوں کو پرکھیں، پھر دل کا دروازہ کھولیں۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے، نہ کہ صرف خوشیوں میں۔ نرم بات کے پیچھے نیت بھی صاف ہو یہ ضروری نہیں۔ دوست بہت سے بناوٹی رشتوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ زندگی میں اصل کامیابی یہ نہیں کہ کتنے لوگ آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کتنے لوگ دل سے آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔
1: سامعین، اس وقت اسٹوڈیو کی گھڑی میں 10:59 ہو رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں دہلی سے ہندی اور انگریزی خبریں سنائی جائیں گی۔
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
3: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
2: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और

0: शैक्षिक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary, Eduparthi K. Palaniswamy, has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers: Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. The Ministry of Education today organized a high-level diplomatic interaction on Bharat Innovates 2026 in New Delhi as part of preparations for the Global Innovation Event scheduled to be held in Nice, France from 14th to 16th of June next year under the India-France Year of Innovation.

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है 11:11:05। तो चलिए शुरू करते हैं गीत मेरे मनमीत की साहिर लुधियानवी के लिखे गीत के साथ। महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज होगी, संगीत रवि का है, फिल्म का नाम है हमराज। और इसके बाद आप सुनेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी का लिखा गीत होगा, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। तो इन दो फिल्मों से गीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है गीत मेरे मनमीत।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड, आपने ट्यून इन किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। अगला गीत होगा आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी और इसके बाद जो गीत होगा वो आरडी बर्मन का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत होगा किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। इन दो गीतों का आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

11:45 और 11 सेकंड हो चुके हैं। ये मधुर गीत आपने सुना किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में। आर डी बर्मन का संगीत, गुलशन बावरा का लिखा हुआ ये गीत, फिल्म का नाम ये वादा रहा। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत। अगला गीत है भूपेंद्र और आशा जी की आवाज में, संगीत बप्पी लहरी का है, फिल्म का नाम है एतबार। चलिए सुनते हैं ये गीत, और आज आपके साथ है अर्पणा।

जी हाँ, इन गीतों के माध्यम से आप भी जहाँ खो गए हैं उसे कहते हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। ट्यून इन किया है आपने और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:53 हो चुके हैं। अगला गीत होगा गुलजार साहब का लिखा हुआ, आवाज है लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, फिल्म का नाम है मौसम। इस गीत के साथ ही अर्पणा को दे इजाजत। गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न राज्य स्थानों पर भेजी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे से पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित रहे। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और

0: सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। कगिसो रबाडा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार भारतीय महिला लीग का खिताब जीत लिया है। सीथो एफसी और सेसा फुटबॉल अकादमी के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ होने के बाद ईस्ट बंगाल ने खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी, जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। और अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आंखें, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, हम उनकी कोई रंगी ताबीर बना लेंगे, हम उनकी कोई रंगी ताबीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में हम तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। और अगला गीत आप सुनेंगे मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है आनंद।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। यूं भी नहीं कि शाम व सहर इंतजार था, यूं भी नहीं कि शाम व सहर इंतजार था, कहते नहीं थे मुंह से मगर इंतजार था। मुद्दत के बाद फूल की सूरत खिला था दिल, मुद्दत के बाद फूल की सूरत खिला था दिल, शबनम की तरह ताजोतर इंतजार था। बालों में धूल पांव में छाले न थे मगर, बालों में धूल पांव में छाले न थे मगर, फिर भी कुछ एक रंज सफर इंतजार था, फिर भी कुछ एक रंज सफर इंतजार था। यूं भी नहीं कि शाम व शहर इंतजार था, कहते नहीं थे मुंह से मगर इंतजार था। वक्त आ चला है आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी की सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहनों की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की भी आधिकारिक पुष्टि हुई है। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरमत दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। आज रॉयल चैलेंजर्स

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने का पहला गीत फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल।

हर एक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, हर एक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते। बहुत चमकते हैं कुछ लोग पहली बारिश में, बहुत चमकते हैं कुछ लोग पहली बारिश में, मगर वो बाद में पहले से तर नहीं रहते। हर एक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात ने धीमे से चांद से कहा, रात ने धीमे से चांद से कहा, तुम्हारी चुप्पी इतनी गहरी क्यों है? चांद मुस्कुराया, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता। रात बोली, फिर ये तन्हाई किसकी है? चांद ने उत्तर दिया, ये उन लफ्जों की है जो होठों तक आकर लौट जाते हैं। रात ठहरी, क्या कोई सुनता भी है इन्हें? चांद झुका, हां, जो रोशनी से नहीं एहसास से देखते हैं। रात ने आंचल फैलाया, तो आज मैं इन्हें समेट लूं? चांद ने सिर हिलाया और कहा, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे। रात बोली, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? चांद ने कहा, क्योंकि शोर में कोई सच्चाई नहीं होती, क्योंकि शोर में कोई सच्चाई नहीं होती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तलाश, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मुकेश की।

तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, ये दुनिया भी उसी पल कुछ नरम लगती है। तेरी हंसी में कोई रोशनी सी बसती है, तेरी हंसी में कोई रोशनी सी बसती है, उसी के संग मेरी हर घड़ी चमकती है। तुम्हारी याद का

का मौसम अजब करिश्मा है, तुम्हारी याद का मौसम अजब करिश्मा है। उदास शाम भी चुपके से मुस्कुराती है, उदास शाम भी चुपके से मुस्कुराती है। तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, ये दुनिया भी उस पल कुछ नरम लगती है। और अगला गीत, फिल्म का नाम है आवारा, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की।

वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है कभी कभी, आवाज है किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी की सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलिवफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिन की अहम शिखर वार्ता होगी। ये शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संकट के कारण अमेरिका और चीन के संबंधों पर दबाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरों मध्य बंद किए जाने और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी से चीन के तेल आयात और व्यापार पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगली में कल दोपहर दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनहानि की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहन की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में पहला गीत, फिल्म का नाम है शक्ति और आवाज है लता मंगेशकर की।

0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं।

वह चला भी गया पर ये सफर कम नहीं हुआ। वह चला भी गया पर ये सफर कम नहीं हुआ। आईनों से उसका अक्स मगर कम नहीं हुआ। मुलाकातें जो कभी रोशनी लिखती थी घरों में, मुलाकातें जो कभी रोशनी लिखती थी घरों में, धूल बैठी तो लगा वह असर कम नहीं हुआ। वक्त की चाल ने कितने ही चेहरे बदल दिए, वक्त की चाल ने कितने ही चेहरे बदल दिए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है दो रास्ते, आवाज है मोहम्मद रफी की। आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए

0: हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency NTA on the 3rd of this month. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of the flow test with the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Karagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected S.P. Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to the UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit, there will be talks on energy security.
3: During the visit to the United Arab Emirates as well, discussions will take place on energy security. Apart from this, there will be also the Nordic Summit along with the visits from Norway, Sweden, Italy and the Netherlands. These countries are major hubs of innovation and India is also doing significant work in the innovation ecosystem. Therefore, discussions will take place on all these issues and how we can help lead India towards the vision of a developed nation.
0: कैसे मजबूत किया जाएगा।
2: Chief Justice of India.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हमराही में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका दोस्त शमीम खान। दोस्तों, रात के इस धीमे ठहरे हुए पहर में जब शहर की आवाजें थम कर सो जाती हैं और कुछ अधूरे ख्वाब और ख्याल अब भी जाग रहे हैं, आप सुन रहे हैं वो सफर जहां बातें कम होती हैं और एहसास ज्यादा होते हैं। कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वो पुराने खतों की तरह खुलती हैं जिनमें किसी की हंसी रखी होती है तो किसी की नाराजगी, तो कहीं कुछ अधूरी मुलाकातें। आज की इस महफिल में हम उन्हीं यादों के कोनों में चलेंगे जहां पुराने हिंदी गीत बसते हैं या यूं कहूं कि अब भी चुपचाप सांस लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही नगमे से जो शायद आपने भी कभी किसी की याद में गाया हो या सुना हो। तो आइए सुनते हैं उस खूबसूरत गीत को जिसे आवाज दी है किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि दिन के मुकाबले रात ज्यादा सच्ची लगती है। दिन में हम किरदार निभाते हैं और रात में खुद से मिलते हैं। कुछ लोग इस वक्त लंबी सड़कों पर होंगे और कुछ किताब के खुले पन्नों पर सो गए होंगे और कुछ किसी पुराने नाम को याद करते हुए या दोहराते हुए बस चुप बैठे होंगे। दोस्तों, पुराने गीतों की खूबसूरती भी यही है, ये शोर नहीं करते हैं, बस धीरे से आपके दिल के पास आके बैठ जाते हैं। अब जो गीत आप सुनने वाले हैं उसमें मोहब्बत भी है, इंतजार भी है और वो खामोशी भी है जो अक्सर मैं ठीक हूं के पीछे छुपी होती है। आइए उस गीत को सुनते हैं।

रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, यादें भी अपनी आवाज बढ़ा देती हैं। कुछ चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वक्त बीतने के साथ भी दिल की दीवारों पर वैसे ही टंगे होते हैं। बहुत अजीब बात है ना ये। कभी कभी एक पुराना गीत सालों बाद भी आपको वही एहसास लौटा देता है जिसे हम समझते थे कि हम भूल चुके हैं। अगला गीत शायद आपको वही एहसास दोबारा से लौटा दे। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान।

दोस्तों, अगर आप इस वक्त अकेले हैं तो ये बात याद रखिए कि अकेलापन हमेशा उदासी नहीं होता। कभी कभी यही वक्त हमें अपने सबसे करीब ले आता है, जहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बस दिल और उसकी आवाज। वो शायद इसलिए क्योंकि उसमें जिंदगी भागती नहीं बल्कि ठहर जाती है। और यही वो वक्त होता है जब हमारा दिल पूरी तरीके से मदहोश हो जाता है, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ अधूरी होकर भी उम्र भर साथ चलती हैं। हम सब के दिल में कोई ना कोई ऐसा कोना होता है जहां एक नाम आज भी हल्के से धीरे से दस्तक देता है, और शायद इसीलिए पुराने गीत हमें इतने अपने लगते हैं क्योंकि वो सिर्फ गाए नहीं गए हैं बल्कि वो गीत जिए गए हैं। अब कार्यक्रम का अगला गीत उन एहसासों के नाम जिन्हें कभी शब्द नहीं मिल सके, लेकिन वो हमारे दिल के कोने में कहीं ना कहीं आज भी हैं।

दोस्तों, रात का यह हिस्सा सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि इसी वक्त दिल सबसे ज्यादा सच बोलता है। जो बातें दिन की रोशनी में हम टाल देते हैं, वो रात की खामोशी में अक्सर चुपचाप आकर हमारे पास बैठ जाती हैं। लेकिन शायद यही तो संगीत का काम है, जो हमारे भीतर के शोर को धीरे धीरे सुकून में बदल देता है। और अब एक ऐसा गीत, एक ऐसा नगमा, जो बरसों से तन्हा रातों का

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

दोस्तों, पुराने गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, ये वक्त के वो टुकड़े हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। चलते चलते एक आखिरी नगमा, उन लोगों के नाम जो याद तो बहुत आते हैं लेकिन अब जिंदगी में नहीं आते। ये रात सलामत रहे और यादें महफूज रहे और संगीत हमेशा आपके साथ रहे। इस कार्यक्रम से मुझे आपके दोस्त शमीम को दीजिए इजाजत। अलविदा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडे के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है, इनोवेशन इकोसिस्टम।

0: में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को

0: निदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG, 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that the special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency NTA on the 3rd of this month. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam.
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है।
3: वी हैव हैंडेड ओवर दिस मैटर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर इंक्वायरी एंड ऑल दोस इन्वॉल्व्ड इन सच रॉन्ग डूइंग विल बी सेंट टू जेल सो दैट स्टूडेंट्स फ्यूचर आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड इन एनी वे। अलॉन्ग विद दिस वी विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन अगेन इन अ कम्प्लीटली फेयर मैनर विद नो इरेगुलरिटीज ऑफ एनी काइंड एंड नो एडिशनल फी विल बी चार्ज फॉर द री एग्जामिनेशन।
2: फीस नहीं चार्ज करेंगे।
1: The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of the flow test the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Karagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs have elected S.P. Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media after a meeting at former minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. India will host the BRICS foreign ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state for the practical implementation of Prime Minister Narendra Modi's call. He urged citizens to reduce fuel consumption and avoid unnecessary purchases of gold. The Chief Minister of Yogi Adityanath directed that the fleet to the Chief Minister, ministers and others be immediately reduced by 50%. He also appealed for prioritizing the work from home culture in the state. In Maharashtra, 6 devotees were killed and around 15 others injured after a wall collapsed during a religious gathering in Jat Tehsil of Sangli.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम अरुणिमा में आपका स्वागत है और अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज की इस शांत रात में हम साथ चलेंगे उन गीतों के जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, वो नगमे जिनमें मोहब्बत भी है, इंतजार भी और अधूरी बातें भी। तो बस खिड़की के बाहर देखिए, अगर आपको चांद दिख जाए तो बस हल्का सा मुस्कुरा दीजिएगा, और अगर किसी की याद आ जाए तो आज उस याद को आने दीजिएगा।

दोस्तों कभी कभी ना जिंदगी हमें बहुत आगे ले जाती है, इतना आगे कि पीछे मुड़कर देखने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन फिर अचानक कोई पुराना गाना हमारे कानों में सुनाई देता है। हम फिर वहीं लौट जाते हैं, उसी गली में, उसी मौसम में, अपने लोगों के बीच, जहां किसी ने पहली बार हमारा नाम लेकर पुकारा था। दोस्तों हमारे हिंदी फिल्मों के गीतों में यही तो बात थी, ये सिर्फ

दोस्तों, रात जितनी गहरी होती जाती है, दिल उतना सच बोलने लगता है। दिन में हम सब कुछ ठीक होने की अदाकारी करते हैं, लेकिन रात किसी अदाकारी को नहीं मानती। वो पूछती है, क्या सच में सब भूल गए हो? क्या सच में अब फर्क नहीं पड़ता? और फिर कहीं दूर रेडियो पर एक पुराना गीत बज उठता है और जवाब खुद ब खुद आंखों में आ जाता है।

आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी पसंद के गीत हमारे साथ रह जाते हैं, फिर चाहे दिन बदल जाएं, साल बदल जाएं या शहर बदल जाए। लेकिन जैसे ही वो दिन सुनाई देती है, हमारा दिल चुपके से कहता है, अरे ये गाना तो उसका था। और शायद इसीलिए हमारी फिल्मों के पुराने गीत आज भी हमें उतने अपने से लगते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ संगीत नहीं था, किसी का एहसास छुपा हुआ था।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है, अरुणिमा और शमीम हैं अभी आपके साथ। दोस्तों, अगर इस वक्त आप सफर में हैं, कोई लंबी सड़क आपके साथ चल रही है, या फिर कमरे की लाइट बंद करके आप चुपचाप बैठे हैं और रेडियो सुन रहे हैं, तो ये गीत आपके लिए है। क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे रात की हवा या किसी की कमी, और उस कमी को महसूस करता हुआ ये खूबसूरत सा गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और कुमार शानू ने।

दोस्तों, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद मिलना नहीं होता, बल्कि वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो बाद में यादें बन जाती हैं। एक साथ सुना हुआ कोई गीत, देखी हुई कोई फिल्म, बारिश में की गई लंबी बात, या देर रात सो गए क्या वाला संदेश, और फिर एक दिन बस ये गीत रह जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है ना, ये अच्छे गीत कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते।

दोस्तों, रात अब और शांत हो गई है और घड़ी की सुइयां 4:48 बजा रही हैं। और ऐसे वक्त में दिल सबसे ज्यादा पुराना हो जाता है। उसे पुराने लोग याद आते हैं, पुरानी जगहें, पुरानी खुशबुएं और वो आवाज जिसे सुने हुए शायद बरसों बीत चुके हों।

दोस्तों, ये गीत संगीत हमेशा हमें अपनों की याद दिलाते रहेंगे। दिल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसमें एक कोना हमेशा पुराना रहता है। दोस्तों, कार्यक्रम अरुणिमा में आज यहीं तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट

0: यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस करेगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए आज होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं, तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और ये सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत ने घरेलू उत्पादन को 36,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन कर दिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। श्री पुरी ने कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल और एलएनजी तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार मौजूद है और आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम भोर सुहानी में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों, ये रात धीरे धीरे सुबह की तरफ बढ़ रही है और इस शांत वक्त में अगर आप जाग रहे हैं तो शायद जिंदगी आपसे कुछ कहना चाहती है। कभी कभी सन्नाटा भी बहुत खूबसूरत जवाब देता है। बस सुनने वाला दिल होना चाहिए।

दोस्तों, आज की सुबह उन सभी लोगों के नाम जो टूटे नहीं हैं, बस थोड़ा सा थक गए हैं। यकीन मानिए, हर मुश्किल रात के बाद जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीख जाती है। और शायद आज की सुबह आपके लिए वही नई शुरुआत लेकर आई है, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों, आसमान में अब हल्की रोशनी उतर रही है, जैसे आसमान खुद कह रहा हो, कल जो नहीं हुआ वो आज हो सकता है। उम्मीद कभी शोर नहीं करती, वो बस चुपचाप दिल में उतर जाती है।